ऐसे मुले वगे उतुम दे अकने अयो मुले अमारु अकिया इरे दमा कलग गया किसु पाट अपे दवत ने मुले बले धरम दे अकने ऐसे मुले वगे उतुम दे अकने अयो मुले अमारु अकिया इरे दमा कलग गया किसु पाट